जलू आई है बारू बादू वेता फुतुनते हैं हबरु दनी है मगे मूनु गलकुनु लेवे हैं जहमु वणी है

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: لاوي كفه لاوي.
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: दुआ को सारे गीतों को जा सारो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हुम था अबदु एकु गगुमा बाउदुवे